0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें परमानंद @optusnet.com.au पर। बेस्ट सर्विस।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

न बदला में न बदला।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

हेलो एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 4 मिनट हो गए हैं 1:00। स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विश्वानी सुन रहे हैं। आप कहीं भी हैं, किसी भी हाल में हैं, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारा सा प्यार हमारी तरफ से आप तक पहुंचे रेडियो विश्वानी से। और क्या बात है, वीकेंड आ गया ना, मस्त दिन है। हैप्पी वीकेंड एवरीवन। इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो भी खुशियां आपके पास है, आज आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी है, तो आपको बहुत सारी सी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप रेडियो ब्रिजवानी पर अगर आप अनाउंसमेंट देना चाहते हैं तो 3279-1701 हमारा स्टूडियो लाइन नंबर है, नहीं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपके साथ सु

जिंदगी की राहें बहुत कठिन है दोस्तों। जिंदगी की कुछ राहों पर अकेले ही चलना पड़ता है। लगे जुट होकर तो खुद ही संभलना पड़ता है। हर कदम पर नहीं मिलता साथ देने वाला कोई, इसीलिए अपना सहारा हमें खुद ही बनाना पड़ता है। हैप्पी वीकेंड एवरीवन।

आज का पहला गीत जो है इसे मैंने जिंदगी पर लिया है, बहुत प्यारा से गीत है, आप सभी के लिए जा रही है जो रेडियो ब्रिजवाणी सुन रहे हैं। क्योंकि जिंदगी मस्त है, कल क्या पता कल हो ना हो, इसीलिए जिंदगी मस्त जियो।

मन्ना डे की आवाज में बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना, अपने लिए, हमें अपने लिए तो ही जीना है जिंदगी में। दोस्तों चलते हैं अगला गीत की फरमाइश, यानी कि पहली फरमाइश है आज की हमारे पास। हम चलते हैं ग्रीन एकर सिडनी रजिन और मालती प्रसाद की ओर से। शायद लास्ट वीक उन्होंने अपना दो ही फरमाइश मिस कर दिए, चलते हैं आज उनकी पहली फरमाइश है। एक प्यार का नगमा है, आपने फरमाइश किया फिल्म शोर से लिया गीत।

0: दोस्तों एक प्यार का नगमा है, बहुत प्यारा सा गीत, फिल्म शोर से लिया गीत, जिसकी फरमाइश आई थी हमारे पास ग्रीनेका सिडनी से रजेन और मालती प्रसाद की ओर से। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान।
1: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ, वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701। 222 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में, 1:00 टाइम है और यह शाम का सफर रेडियो विजवानी, माफ कीजिएगा, एक शनिवार मस्ती म्यूजिक है रेडियो विजवानी IM आप सुन रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। तो चलते हैं, देखिए साथ है हमारा आपका आज ठीक 3 बजे तक, बहुत से लोग हमारे साथ ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। अगर अभी आपने हमारा साथ दिया है तो स्वागत है आप सभी का रेडियो विजवानी IM पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक और अनाउंसमेंट है, टुमारो संडे जो मेरा 2:30 प्रोग्राम है, एक बार फिर 12:30 से आप हमारे साथ हो जाएंगे। वंस अगेन रॉय वॉन्ट बी इन, सो आपका मेरा साथ होगा टुमारो संडे शाम सफर पर 12:30 से। चलते हैं लेस वेगस की ओर, फरमाइश है हमारे पास लेस वेगस से दिनेश सोलंकी, दक्षा सोलंकी की ओर से। आप दोनों के लिए एक बहुत प्यारा सा गीत रिमिक्स बीट्स पर।

बिरफुल सॉन्ग चूड़ी मसाना देगी, कंगन मसाना देगा। हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में दक्षा सोलंकी, दिनेश सोलंकी जो हमें सुन रहे हैं लेस वेगस में। चलते हैं, अगली फरमाइश भी हमारे पास है सेक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम की ओर से, और आपके लिए बहुत प्यारा सा एक कृष्णा भजन सॉन्ग।

0: इस गीत में यानी कि इस कृष्णा भजन में हमारे साथ शामिल हो गए थे ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर। और अगर आपने अभी हमारा साथ देने का शुरू किया ने अभी ट्यून अप किया है तो आपका स्वागत है रेडियो विस्वानी पर।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: अरे शनिवार मस्ती म्यूजिक है दोस्तों, रेडियो विस्वानी आयाम, और हमारे साथ शामिल हो गए हम चलते हैं मेलबर्न की ओर। जी हाँ, मेलबर्न में आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे अल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद, आप दोनों के लिए लेटेस्ट बीट्स पर सुनते हैं अगला गीत।

और हाँ दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे ऑल द वे मेलबर्न से एल्फ्रेड और किरण प्रसाद। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी और पौने दो बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। रिश्तों में वक्त दीजिए दोस्तों, बड़े बड़े तोहफे नहीं, ताजमहल दुनिया ने देखा है मुमताज ने नहीं, क्योंकि रिश्ते दौलत से नहीं एहसास और साथ से खूबसूरत बनते हैं। जिससे आपका समय मिल जाए उसके लिए वही सबसे बड़ी कीमती तोहफा है। हम चलते हैं एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए से फरमाइश है इस बार विजयन और कामिनी की ओर से। आप सुनना चाहते हैं अगला जो गजल है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में, एंजॉय।

0: ब्यूटीफुल गजल आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। ब्यूटीफुल रोमांटिक कपल ने इस गीत को यानी इस गजल को फरमाइश किया जो हमारा प्रोग्राम सुने सैक्रामेंटो यूएसए में विजयन और कामनी।
1: प्रिया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और एलए की ओर चलते हैं दोस्तों. लॉस एंजलिस में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं विनय और प्रमिला. चलते हैं आप दोनों के लिए पेश अगला गीत रिमिक्स बीच पर है. शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी एएम.

0: जरूर दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे विनय और प्रमिला जो हमें सुन रहे हैं लॉस एंजलिस में। इसी के साथ साथ गीत जो था इसे पसंद आया वहां पर कामनी और विजयन को सैक्रामेंटो यूएसए में। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर। 5 मिनट रह गए हैं दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 2 बजने में। हम चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। हम चलते हैं सिडनी, बैंक्सटाउन सिडनी की ओर। सनी और रमीजा वहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इसी के साथ साथ रशीदा अली फ्रॉम ऑक्सली राइज जो ब्रिस्बेन के रहने वाली है आज हमें सुन रही है बैंक्सटाउन सिडनी में सनी और रमीजा के घर पर। चलते हैं आप सभी की पसंद पर, सुनते हैं अगला गीत।
1: You think this sort of music, eh? You like it?

0: अब दोस्तों जरूर फरमाइश है थी हमारे पास बैंकस्टाउन सिडनी से सनी और अमीजा की ओर से, और साथ में रशीदा अली जो ब्रिस्बेन के रहने वाली अक्सली राय से आज हमें सुन रही है वहां पर सिडनी में सनी और अमीजा के साथ। एंजॉय हॉलीडे रशीदा।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: चलते हैं कैलिफोर्निया यूएसए की ओर। दोस्तों बहुत देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार में है कौन? हमेशा की तरह मैक्स प्रसाद। मैक्स आपके लिए, चलते देखे क्या है।

बहुत प्यारा सा गीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और हमारे साथ शामिल हो गए थे इस गीत में मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया USA, और इस गीत को मैंने लिया था आई थिंक इज फ्रॉम सुरिनाम एंड ट्रिनिडाड सॉन्ग। हमारे पास बहुत कुछ है, अगर आप संडे प्रोग्राम में मेरे साथ 12:30 से शामिल होंगे दोस्तों, तो और ज्यादा कुछ लेटेस्ट हम लेकर आने वाले हैं। अगर आज सभी प्ले कर देंगे तो टुमारो विल बी नो सरप्राइजेस। हम चलते हैं अगले गीत की ओर, बढ़ते हैं केड्रोन पार्क की ओर, और केड्रोन पार्क में हमें सुन रहे जोनी और सविता। हमेशा की तरह आप दोनों के लिए लेटेस्ट बीस पर सुनते हैं अगला गीत।

और हमारे साथ शामिल हो गए थे जोनी और सविता फ्रॉम कैडरन पार्क. हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर. विजय, जो वहां पर मुझे बताया गया है बैठकर पगोला में अपने प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट फीडबैक फ्रॉम ओवर देयर. चलते हैं आपके लिए आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत.

आदर्श पनवाड़ी के पीछे की फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो से, जहां हमें सुन रहे विजयन जी। चलते हैं एक बार हम फिर लास वेगास। दक्षा सोलंकी हमें सुन रही है, जिन्होंने अपने गीत को किसी कारण मिस कर दिया, इंटरनेट के कारण, उनकी इंटरनेट कुछ सही नहीं चल रही थी, तो अब थोड़ा सा सही चल रही है, तो इंटरेस्टेड टू लिसन टू हर सॉन्ग। लेकिन वही गीत है दक्षा, सॉरी हम आपके लिए नहीं लेकर आ पाएंगे, एक अगला गीत है, दूसरी गीत मैंने चुना है आपके लिए। तो दक्षा सोलंकी, दिनेश सोलंकी फ्रॉम लास वेगास, आप दोनों के लिए सुनते हैं अगला गीत।

लास वेगास से फरमाइशें थी हमारे पास दक्षा सोलंकी की ओर से, साथ में दिनेश सोलंकी की ओर से। दोस्तों इसी के साथ साथ 20 मिनट होने वाले हैं हमारे स्टूडियोस में 2:00 आपके साथ हिरसू रेडियो पिस्पानी आईएम आप सुन रहे हैं। यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक और इसमें आप सभी मस्ती भरे गीत सुन रहे हैं हमारे साथ।

और चलते हैं एक ऐसा गीत आप सुनने जा रहे हैं, पहली बार आप इस गीत को सुनने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है 1938 में इंडियंस अराइव इन गयाना फ्रॉम इंडिया, जैसे कि हमारे फिजी वाले लोगों को लाया गया था इंडिया से, जहां जहां से वही वही जगह से उन्होंने गयाना और साथ में त्रिनिदाद सूरीनाम गयाना में उन लोगों को लेकर गया गया था गिरमिटियस को, और उसी पर उन्होंने एक बहुत प्यारी सी गीत बनाया है। तो सुनते हैं इंडियंस अराइव इन गयाना 1938, और इस गीत में आप सभी कुछ सुन सकते हैं उन्होंने क्या बताया है अपने कंट्री के लिए।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: और दोस्तों फरमाइश है हमारे पास मैनली वेस्ट की ओर चलते हैं, लक्ष्मी की ओर से। और लक्ष्मी आपके लिए लेटेस्ट पेश है।

0: दोस्तों हमारे पास फरमाइश आई थी, हमारा प्रोग्राम सुन रहे लक्ष्मी इन मैनली वेस्ट.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

के साथ साथ दोस्तों बस 10 ही मिनट रह गए हैं 3 बजने में हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर, और हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 3 बजे तक। अब हम किसी का फरमाइश नहीं ले सकते हैं।

इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा चलने का समय हुआ, जबकि आपको पता है सैटरडे मेरा मस्ती भरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में ज्यादातर मैं मस्ती भरा प्रोग्राम यानी फास्ट सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स लेकर आती हूँ। तो चलते हैं, जो एक ऐसी गीत है जो आई रियली वांट टू प्ले इन दिस प्रोग्राम, वो है सैटरडे नाइट एट द सिनेमास, और बहुत प्यारा सा गीत है, शायद आपने कभी नहीं सुना हो, अट्रिब्यूट टू गयानास 1980s मूवी नाइट सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे, आप सभी के लिए पार्टी टाइम।

Yes, only tonight, Amitabh Bachchan, double feature tonight. आपने सुना बहुत प्यारा सा गीत, ट्रिब्यूट टू गयाना, प्यारा सा गीत. इसी के साथ साथ ये सैटरडे नाइट पर बना था, सो इट्स अ सैटरडे प्रोग्राम, इसीलिए मैंने सोचा इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू प्ले इन दिस प्रोग्राम. इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे स्टूडियोज में बस दो मिनट हो गए 3:07, हमारा आपका यहीं तक था. साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी अगली मुलाकात है, रिमेम्बर टुमारो आई स्टार्ट एली, दैट्स 12:30. रोय सिंह हमारे, अगर आप रोय के लिसनर है तो रोय एक बार फिर हमारे स्टूडियोज में नहीं आने वाले हैं, इसलिए हमारा आपका साथ है 12:30 से. नमस्ते. Stay, khuda hafiz, take care, love you all, goodbye, have a nice weekend.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

हैं वीकेंड सोल्स, एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर, और ये है आपका वीकेंड वाला शो सैटरडे डिलाइट। वैसे वो तीन मैजिकल वर्ड्स जिन्हें सुनते ही दिल खुश हो जाता है, बस जहाँ मैजिकल वर्ड्स की बात आती है आप पहुँच जाते हैं सीधे आई लव यू पर। मगर जनाब आज है वीकेंड और हम बात कर रहे हैं उन तीन मैजिकल वर्ड्स की जो हर वो बंदा जानता है जो पूरे हफ्ते काम करके थक जाता है। यस, इट्स द वीकेंड। ये जो तीन मैजिकल वर्ड्स हैं इनकी तो बात ही अलग है और शायद आई लव यू से भी कहीं ज्यादा स्पेशल है ये। तो छू ऑफिस का एड्रेस, ट्रैफिक का टेंशन और बॉस का मैसेज नोटिफिकेशन, आज सिर्फ एक ही रूल चलने वाला है, नो रूल्स ओनली फील्स। तो चलिए शुरू करते हैं सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्वानी पर मेरे रूल्स नो रूल ओनली फील्स के साथ। और आज जैसा कि मैंने कहा कोई रूल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स होंगी, एहसास होंगे और होगा हमारे ऐसे गानों का साथ जो इस सफर में लगा देंगे चार चांद। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को अभी और सुनते रहिए मेरे साथ सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

वीकेंड का मतलब क्या होता है भाई? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है मुझे तो हर वीकेंड पूछना चाहिए, हर सैटरडे पूछना चाहिए। पर देखिए, वीकेंड का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए नेटफ्लिक्स पे एक बढ़िया सी पिक्चर देखना, तो किसी के लिए लॉन्ग ड्राइव या फिर म्यूजिक, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ सो के अपने सपने पूरे करते हैं। मैं हूँ एक अलग कैटेगरी की। मैं आपके साथ अपना सैटरडे स्पेंड करना चाहती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ और आपको ढेर सारे गाने सुनवाना चाहती हूँ। तो फिलहाल मेरे वीकेंड के नाम ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट ओनली ऑन रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर इसी शो को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। जी हाँ, सैटरडे की वाइब्स बहुत ही हाई हैं और हाई हमारी फ्रीक्वेंसी भी है भाई। जोश बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका है और गानों का लेवल रोमांटिक हो चुका है। तो बस अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और इस रोमांस में आगे चलने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आने जा रहा है ये अगला ट्रैक आपके लिए। Keep listening to Radio Prasvani, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

खुश रहा करो, खुश रहा करो, यही जिंदगी के सबसे बड़े दुख की वजह है भाई। हमेशा मुस्कुराते रहना जरूरी नहीं है, अगर रोना आ जाए तो कभी रो भी लिया करिए, अगर सोने का दिल करे तो थोड़ा सो भी लिया करिए, कभी इतना हंसिए कि हंसते हंसते पेट दुख जाए, और कभी इतना खेलिए कि खेलते खेलते थकान हो जाए, कभी आधी रात को कुछ खा लीजिए तो कभी गुमसुम से जाकर खिड़की पर बैठ जाइए, कभी दिल की बातें किसी से करके खुद हल्के हो जाइए। भाई देखिए, जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होगा, सब कुछ सच्चा सच्चा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिंदगी में नमक, मिर्च, मसाला, दोस्त, एनिमीज, सबका स्वाद तो चखना पड़ेगा ना। इसलिए कहती हूँ, हमेशा जिंदगी में सुख की उम्मीद मत रखिए, सुख से परे भी एक जिंदगी है, उसे जी लीजिए। कहने का मतलब है, जिंदगी को जी लीजिए, सिर्फ सुख की चाह मत करिए। और अगला ट्रैक सुनिए, सदाक्षी के साथ, सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सो वेलकम बैक, सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रीटू प्रस्वानी 1701 एम पर, आपके वीकेंड्स को आपके लिए और भी खास और स्पेशल बना रही है बाबू मशाय, आपकी अपनी सताक्षी। तो इस सताक्षी के साथ एक और गाना सुनने के लिए रेडी है, एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रीटू प्रस्वानी पर सैटरडे डिलाइट।

वेल। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि 40s और 60s वालों के लिए वो बात बहुत खास है जो मैं करने जा रही हूँ। 40s से लेकर 60s तक का जो एरा होता है, उम्र का एरा, उस दौरान ना हम सबको लगने लगता है कि यार बस अब बहुत हो गया, अब तो हमें अपने लिए जीना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो इस उम्र में हैं भाई, इस उम्र के बीच में हैं, तो भाई लगता होगा आपको भी ऐसा ना कि आप खुद के लिए बहुत जी लिया। आप हम कैसे दिखते हैं इससे ज्यादा मैटर करता है कि हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं। कौन हमें पसंद करता है इससे ज्यादा मैटर करता है कि हम किसे पसंद करते हैं। हम कितने अट्रैक्टिव हैं इससे ज्यादा हम कितने हेल्दी हैं ये मायने रखता है। हम कितने खुश हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। तो बाबू मोशाय, कम से कम अब तो जी लीजिए अपनी जिंदगी, और चलिए अपने फिटनेस का ख्याल रखिए, और अपने वीकेंड्स को सताक्षी के साथ सुनते रहिए। सैटरडे डिलाइट, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
1: सैटरडे पर सताक्षी का साथ इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्थानी पर, और आपके साथ इस साथ को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम आगे लेकर चल रहे हैं। इस वीकेंड हो रही है आपके साथ कुछ बहुत ही गहरी और प्यार भरी बातें, तो बस आपके साथ मेरी बातों का सफर सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

बात करती हूँ अभी उनसे, जो हाइट छोटी है इसलिए लोगों से लड़ नहीं पाते हैं। हाँ, लोग उन्हें कुछ भी सुना के चले जाते हैं, कुछ भी कह के चले जाते हैं, और वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। देखिए भाई, आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई हमें एक थप्पड़ मारे और हम दूसरा गाल आगे कर दें। तो आज के जमाने में जिनकी हाइट कम है उनके लिए एक सजेशन दूं, बहुत बढ़िया सजेशन है। देखिए, चिंता मत करिए, हाइट छोटी है तो कोई बात नहीं, आपकी जबान तो लंबी है ना, बस वही फेंक फेंक के मारिए सामने वाले को, देखिए फिर उसकी बोलती कैसे बंद होती है। अर्धाक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM।

0: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: सैटरडे के कुछ खूबसूरत लम्हों को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन पर. जी हाँ, ये वीकेंड्स हमारे बहुत ही स्पेशल हो गए हैं, क्योंकि इन वीकेंड्स हमारा आपके साथ साथ जो और खास हो गया है. तो इस साथ से खास को एक अच्छे से गाने के साथ रिकवर किया जाए. आइए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन 1701.

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट। आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर, और ये वो सफर है जो आपके वीकेंड्स को आपके लिए और भी स्पेशल बना देता है। वैसे लोग हमेशा ये कहते हैं कि सपने अपनी औकात के अंदर देखो, पूरा कैसे करोगे? मैं तो ये कहती हूँ कि वीकेंड पर प्रॉपर रेस्ट ले लीजिए, लेकिन सपने हमेशा अपनी औकात के बाहर देखिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, ये आप कहाँ जानते हैं, ये तो ऊपर वाला जानता है ना। वो आपसे कितनी मेहनत करा सकता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए, ये वो जानता है। तो बस सपने हमेशा वो देखिए। और वैसे भी मैं कहती हूँ यार कि अगर अपने औकात के अंदर सपने देखे तो सपने क्या देखे, उन्हें तो आप पूरा ही कर लेंगे। बात तो तब है, सपने तो तब है जब आप अपनी औकात के ऊपर जाकर देखें, जिन्हें पूरा करने से पहले लगे कि यार इसके लिए यहां तक पहुंचना है। तो रेस्ट कीजिए, क्योंकि वीकेंड्स के बाद फिर से सपनों की उड़ान भरनी है। लेकिन अभी सपनों की भी बात नहीं करेंगे, एक बढ़िया सा गाना सुनवाएंगे, क्योंकि ये टाइम तो चिल टाइम है, और इसमें थोड़ा सा चिल करते हैं। आइए अगले ट्रैक के साथ, कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: सटरडे की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बातें इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो पुला मस्ती पर। मेरे साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट, और सैटरडे पर ये जो साथ है ना मेरा आपके साथ, ये आगे भी बरकरार रहेगा, जारी रहेगा। Keep listening to Radio Prasfani 1701.

एक वक्त एक टाइम ऐसा होता है जिंदगी में जब हम लोगों को बहुत सफाई देते हैं, क्योंकि शायद हम रिश्ते खोने से डरते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम सफाई देना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि बस सफाई देने से कुछ होने वाला नहीं है, और सफाई दे दे के तो हम सफाई कर्मी बन जाएंगे ना। मतलब फिर तो डस्टिंग की या किसी भी तरह की सफाई के लिए हमारी जरूरत पड़ने लगेगी लोगों को। तो भाई इतना सफाई मत दीजिए कि लोग आपको काम के लिए अपॉइंट करना शुरू कर दें। हाँ, सफाई उतनी ही दीजिए जितनी जरूरी है, और वो भी उसे जिसे देना जरूरी है। भाई मेल्स हस्बैंड्स घरवाली को सफाई दीजिए, समझ में आता है। मॉम डैड को सफाई दीजिए, समझ में आता है। भाई वाइफी अपने हस्बैंड को सफाई दीजिए, समझ में आता है। लेकिन किसी के ऐसे बंदे को सफाई देना जिसके साथ हमें लगता है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, वो गलत है ना जी। तो ख्याल रखिए, सफाई वाले मत बनकर रह जाइए सफाई दे दे के। खुद की इज्जत का, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। और सदाक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देखरो इनेज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा है, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: आज कुछ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बातें चल पड़ी हैं, बड़े मस्ती चल पड़ी है, क्योंकि गाने यार मस्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत बातें तो मैं भी कर लेती हूँ जो आपको हंसा देती होंगी, मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती होगी, जिनके साथ ऐसा लगता होगा कि यार थोड़ा और लंबा जोक हो सकता था, होता है ना। हाँ, तो बस ये बातें जो है ये करूंगी आगे, लेकिन अभी एक अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए बॉस, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट। और अभी कुछ लोगों की आवाज आई, बॉस का नाम मत लेना आज सताक्षी, बिल्कुल नहीं लेंगे भाई। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को एंड कीप लिसनिंग टू आपका अपना सैटरडे डिलाइट।

देखिए, प्रेशर कुकर में जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो क्या होता है, सीटी बजती है ना। और अगर प्रेशर कुकर के बाहर प्रेशर ना निकले, वो सीटी ना बजे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रेशर फट जाएगा। हाँ, मैं ऐसी स्टूपिड बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। आपके प्रेशर का क्या भाई, प्रेशर तो आप भी बहुत सारा ले रहे हैं ना। ना ना, वो वाला प्रेशर नहीं, सुबह वाला भाई, वो ऑफिस का प्रेशर, वो घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर। और ये प्रेशर निकलेगा कैसे, अगर ये फट गया तो आपका दिमाग जो है उस प्रेशर को ले लेकर परेशान हो रहा है। इसलिए वीकेंड्स आते हैं आपकी जिंदगी में, ताकि आप थोड़ा चिल करें। और हम जनरली करते क्या है, हम वीकेंड्स पर भी वो घर की बातें, वो रिश्तेदारों की बातें, वो किसकी शादी में कितना शगुन देना है उसकी बातें, वो कब जो है किस पार्टी में जाना है, कब कौन घर आने वाला है, कौन सा मेहमान कितने दिन से घर नहीं आया डिनर पे, ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी बातें उसी दिन डिस्कस करते हैं। भाई इनको रोज के दिनों के लिए रखिए, और वीकेंड पर सिर्फ और सिर्फ आप, आपका पार्टनर और बहुत आपकी फैमिली आपके साथ हो, एक बढ़िया सी पिकनिक ट्रिप हो, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, आप अपने उस टाइम को एंजॉय करें, प्रेजेंट टाइम में उस वक्त आप जिए, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है, सोचिए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यू नो व्हाट आई थिंक समटाइम्स कि यार, जब कैमरे अच्छे नहीं थे तो रिश्ते बहुत अच्छे थे, है ना? बेशक हम उस वक्त जूम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के बहुत करीब रहा करते थे। तस्वीरें बेशक धुंधली होती थी, लेकिन उस वक्त मन बहुत साफ हुआ करते थे। तो हाँ, जब कैमरे अच्छे नहीं थे तो दिल करीब हुआ करते थे, और अब जब कैमरे करीब आ गए, कैमरे अच्छी क्वालिटी के आ गए, सेल्फीज लेकर हम बड़ा इम्प्रेशन दिखाने लगे, दिलों से दिलों को मिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दिल उतना ही दूर होते गए जितना हम जूम करके करीब आते जा रहे हैं। सोचिए मेरी बात को एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ, सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

तो दोस्तों, ये थी इस वीकेंड हमारी और आपकी कुछ प्यारी सी मोहब्बत से भरी, रोमांस से भरी और वीकेंड के लम्हों से भरी कुछ खास बातें। अब ये वक्त है आज के सफर को वाइंड अप करने का, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट वीकेंड आपसे फिर से होगी एक ताजा तरीन और बेहतरीन से मुलाकात। तो जब तक सताक्षी आपसे दोबारा मिलती है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, वीकेंड्स एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गया।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: सुमन लेट हो गए, ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता रूम में रह गया।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जान पहचान हो, जीना आसान हो। जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो,

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

जय श्री राम। प्रणाम दोस्तों, जागिए क्योंकि सुबह हो चुकी है और आपके अंतर मन के कपाट खोलने का समय हो गया है। आ गई है सताक्षी आपके और प्रभु के रिश्ते को और भी अटूट बनाने के लिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर इस वीकेंड एक बार फिर से लेके भक्ति सागर। तो आज की इस पावन सुबह में आप सभी का एक बार फिर से पुनः दिल से स्वागत है। कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अगर ईश्वर के नाम से हो तो पूरा दिन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आज का दिन आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इसी प्रार्थना के साथ आइए डूबते हैं भक्ति के इस समंदर में।

भक्ति सागर सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी 107.1 एफएम पर। इस सफर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, एक बार एक भक्त ने ईश्वर से पूछा कि प्रभु, मैं तो रोज आपके मंदिर आता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब सोना आग में तपता है तभी तो वो कुंदन बनता है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति और विश्वास को जगाने के लिए आती हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी कभी घबराना मत, और ये याद रखना कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस हम भी उस परम पिता पर भरोसा रखते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, और वो जो भी राह हमें दिखाएगा वो राह हमें जरूर भवसागर से पार करेगी। आइए इसी विश्वास के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं भक्ति सागर में। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी सताक्षी के साथ।

भक्ति सागर ये वो साथ है जिस साथ में आप और हम साथ मिलकर अपने जीवन को आनंदित कर लेते हैं। सुबह सुबह ईश्वर की भक्ति से ज्यादा आनंददायक भला और क्या हो सकता है। तो आइए भक्ति रस का आगे मजा लेते हैं इस अगले गीत में। सुनते रहिए भक्ति सागर आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

जैसे जैसे आप भक्ति में लीन होते हैं, भक्ति का रंग और भी गहरा होता जाता है। लेकिन देखा जाए तो अक्सर हम भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति क्या है ये समझने में हम जरा चूक जाते हैं। तो श्रोताओं, सच्ची भक्ति है अपने भीतर के अहंकार को मिटा देना। जब हम में से मैं मिट जाता है तब वो प्रकट होता है, और इसीलिए तो कहते हैं कि अपने मैं को मिटा दीजिए, क्योंकि जब तक आप में मैं रहेगा तब तक आप में अहंकार रहेगा, और जब तक आप में अहंकार रहेगा तब तक वो आप में आएगा नहीं। आइए एक और भक्ति गीत के साथ भक्ति सागर को आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

0: से।
1: भक्ति का रंग जब भक्तों पर चढ़ता है तो ईश्वर से वो और करीब होने लगते हैं, उनकी अंतरात्मा प्रभु के समीप जाने लगती है। इस वक्त आप भी भक्ति के रस में डूबकर सरापोर हो रहे हैं, तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं इस गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर।

सागर सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। अक्सर हम सोचते हैं भक्ति क्या है, तो भक्तजनों रामायण में भगवान श्री राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति यानी भक्त के 9 प्रकार बताए थे। हम अक्सर सोचते हैं कि घंटों बैठकर पूजा करना ही भक्ति है, लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी पहली भक्ति है संतों की संगति और दूसरी भक्ति है ईश्वर की कथाओं में प्रेम होना। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ बैठते हैं या सुबह उठकर सिर्फ शांत मन से भगवान का नाम सुन लेते हैं तो आप भक्ति के पहले 2 चरणों को पार कर लेते हैं। कितना सरल है ना ईश्वर को पाना, बस मन में कपट नहीं होना चाहिए। तो चलिए उस कपट को त्याग दीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर भक्ति सागर।

भक्ति सागर, प्रभु से जुड़ने की हमारी ये जो चाहत है, ये वो सफर है जो उस चाहत की ओर आपको लेकर जाता है। बस कुछ देर प्रभु का नाम स्मरण, कुछ देर सिर्फ उसके बारे में सोचना और सिर्फ उसका होना और उसकी भक्ति रस में डूब जाना, यही तो भक्ति सागर है। तो आइए भक्ति सागर के इस अनमोल रतन को जरा पाते हैं इस गहरे गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, आपके साथ है सताक्षी।

कई बार श्रोताओं हमारे जीवन में दुख आता है तो हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसको जानने के लिए महाभारत का एक सुंदर प्रसंग सुनते हैं। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, ये आपके इस जन्म का नहीं बल्कि 50 जन्म पहले के कर्म का फल है। जब आपने एक शिकारी के रूप में एक पेड़ पर बैठे पक्षी की आंख फोड़ दी थी और उसके 100 बच्चों को मार डाला था, आपके पुण्य इतने थे कि 50 जन्मों तक वो पाप छिपा रहा, लेकिन कर्म का कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। भक्तजनों, कहते हैं ना कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए आज जो भी अच्छे कर्म आप कर सकते हैं बिना फल की चिंता किए करते रहिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ भक्ति सागर, रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

भक्तजनों, ये आज भक्ति सागर में सताक्षी का आपके साथ साथ था। आशा करती हूँ कि आज इस साथ में आपने प्रभु के साथ अपना बंधन जरूर बांधा होगा। आज आप प्रभु की तरफ दो कदम और चले होंगे। वैसे कहते हैं कि अगर आप प्रभु की तरफ दो कदम चलेंगे तो प्रभु आपकी तरफ चार कदम बढ़ाते हैं। तो बहुत ही जल्द भगवान से आपका मिलन हो, इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: यह है रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं।
2: रेडियो ब्रिस्बानी 1701 ब्रिस्बेन
1: और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम।
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ।
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب ہمارا ساپتاہک سیگمنٹ عالم و نیا۔ عالم و نیا از براڈ کاسٹ آن سن رائز ریڈیو بریڈفورڈ ایوری فرائیڈے ایوننگز فرام 8 PM ٹو 9 PM دیٹس لنڈن ٹائم، اینڈ ریکارڈڈ لائیو ہیئر 6 AM ٹو 7 AM ایوری سیٹرڈے مارننگ، and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alim o Nia Maulana Fazal Dand.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم۔ محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا سیشن ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے عالم آن ایئر سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM اکراس ویکس یارکشائر اینڈ پوری دنیا کے اندر آپ اس کو سن سکتے ہیں sunriseradio.fm اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں www.sunrise.radio، اور سن رائز کی اپنی بھی ایپ ہے، اس ایپ کے ذریعے اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے پوری دنیا میں آپ سن سکتے ہیں۔ I am your host Maulana Fazal Dad and this is our weekly session Alim on Air every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time۔ آج کا موضوع ذہن کے اندر ایک اہم موضوع جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی تھی، اور وہ موضوع یہ ہے، the topic I wanted to speak about today is something that touches every single one of us, whether we are old, whether we are young, healthy or weak, rich or poor, every one of us is travelling in a specific direction, and that direction is old age. Of course, if Allah grants us to reach up to there. And the topic I want to be speaking about is looking after the elderly, especially parents, but also the elderly in our society. ہماری معاشرے کے اندر جو بزرگ لوگ ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا، خاصتاً جو والدین ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان میں جو بڑے بوڑھے ہیں، جو کمزور طبقہ ہے ان کا لکافتر کرنا یہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے بلکہ ایک عزت کا مقام ہے بلکہ جنت کا ایک راستہ ہے This looking after the elderly, especially the parents or the elderly in the society, it's our Islamic duty. In fact, it's an honor. And at the same time, it's a path towards Jannah. Jannat ka ek raasta hai. Aur ye baat yaad rahe ke hamare society ke andar, hamare maashre ke andar, bahut badi badi musibatein hain. There are great tragedies that have overcome our societies. And I'm not speaking about poverty. Poverty is a huge catastrophe that can befall a society. Kisi muashre ke andar غربت اگر بہت عام ہو جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑی تکلیف ہے لیکن اس سے بڑی ایک اور مصیبت اور ایک تکلیف ہے اسی طریقے سے اگر کسی معاشرے کے اندر بیماری بہت پھیل جائے تو وہ بھی ایک مصیبت ہے لیکن جس تکلیف اور مصیبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ مصیبت اور وہ تکلیف اکیلا پن The tragedy and the catastrophe that I'm speaking about today is the loneliness. And the loneliness especially in the later years of a person's life. In the years of life when you actually need companionship, you need the society to be with you, you need people to be there, people to brighten up your life. اور بڑھاپے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چاہے بوڑھا مرد ہو چاہے عورت ہو تو بعض اوقات ان کی زندگی کے اندر اتنا اکیلا پن آ جاتا ہے کہ کئی کئی ہفتے ان کے اوپر گزر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا Sometimes many weeks pass on some of the elderly and nobody is there to come and visit with them, sit with them, speak with them, give them company. Something that they actually crave for at this age. Is umar ke andar unko jiski sakht dar sakht zarurat hoti hai ki kam az kam hamare paas koi aakar baithe aur baith kar hamare sath waqt guzare اور ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرے یا ہماری باتیں سنے اور اگر بات چیت نہ کرے یا ہماری باتیں نہ سنے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ وہ ہمارا ساتھ تو دے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ تو بیٹھ جائے Even if that person cannot speak to us long and cannot listen to us long then at the minimum if as an elderly person sitting there in that high chair or in their bed laying down or in that confined room of theirs in that lonely atmosphere they can have somebody sitting with them and spending some time with them so they know that they are in the company of somebody kisi ke saath wo apna din guzar rahe hain I remember an elderly friend and only some days ago I found out he's passed away and the extraordinary thing was on the group chat they wrote that he's passed away in October and now we are in June or in fact July has started. July 2026. And some days ago, in the group chat, in one of the groups on social media, it was sent that such and such person, which most of you will know, an elderly person, has passed away in October. Now think about it. October, November, December, January, February, March, April, May, and June. That's 9 months have passed. And only now people are beginning, his friends and family and surrounding people are beginning to find out that this person has passed away 9 months ago. No mahine pehle ek shakhs jo kisi waqt hamare saath kaam karte the, main school ke andar hota hoon aur us school ke andar wo kabhi kabhi aate the, he would come, and because he was elderly and wanted to spend some time with the youngsters, and he was very good in carpentry, लकड़ी का काम बहुत अच्छा करते थे, बाकी भी और, तो वो चाहते थे कि मैं अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम यंगस्टरों के साथ गुजारूं और उनको कुछ न कुछ सिखा दूं, और हमारे स्कूल के अंदर आकर उनको हम एक छोटी सी ग्रुप दे देते, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, टीचर की निगरानी के साथ, और वो उनको सिखाते कि लकड़ी लेकर बाहर से जो फटी पुरानी लकड़ियां होती, स्क्रैप वुड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द स्किप्स और थिंग्स दैट पीपल हैव थ्रोन अवे, और समटाइम्स व्हेन यू आर रिफर्बिशिंग अ हाउस और अ बिल्डिंग एंड यू सेंड अवे सर्टन पीसेस ऑफ वुड एंड यू डोंट नीड इट एनी लॉन्गर, जो लकड़ियां इस तरह फेंक दी जाती स्किप्स के अंदर, केबिन की जरूरत नहीं है. You're renovating a house and you've broken down the old wood, throwing it away. तो ये बच्चों को सिखाते कि इसको फेंकने के बजाय इसको दोबारा हम रिसाइकल कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं. And he would teach those youngsters. And on purpose, I'm not saying his name now because I don't know how many people know about him, don't know about him, etc. And he, I would see so many times, I remember he took little logs that have been thrown away, tree, parts of a tree, and he made two little stools out of them for the youngsters that would like to sit down during break, during lunch times. Or he showed them how to carve them out. He would make benches out of broken wood, he would join them together, carve them out and make small little plant pots. Wagera, wagera. Such a lovely person. Achanak usko stroke hua. He was taken into hospital and then he was transferred to an elderly person's home. Jo buron ke liye उन्होंने होम्स रखे हुए हैं, तो हम कभी कभी वक्तन फवक्तन उनके पास चले जाते हैं मुलाकात के लिए, उनकी खैर खबरी. हमारे यहां स्कूल के अंदर कुछ फंक्शन होता तो स्पेशल हम गाड़ी भेजते, उनको ले आते. काफी अरसा हुआ उनसे भी किसी ने राबता नहीं किया, किसी ने उनके रिश्तेदार, शायद उनको भी पता होगा, लेकिन कहने का मकसद कि वो बेचारे अकेले उधर होते. तो वो एक मरतबा, असल बात पर आ रहा हूं, आई वॉन्ट टू कम टू द पॉइंट, वंस ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हमने, वी टुक हिज नेम एंड वी सेड, हाउ हैज योर वीक बीन और हाउ हैज योर मंथ बीन, आपका ये हफ्ता किस तरह गुजरा या आपका ये पूरा महीना किस तरह गुजरा. इट वॉज वन वे ऑफ ट्राइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, उनसे बात करने का एक अंदाज था कि चलो बात करना शुरू कर दें. तो उसने हमारी तरफ देखा, हम दो तीन आदमी थे वहां उसको विजिट करने के लिए गए होम में, तो उसने कहा कि द बेस्ट पार्ट ऑफ माय वीक इज व्हेन आई हैव समबडी सिटिंग विद मी, इवन इफ दे आर सिटिंग क्वाइटली. उसने कहा सबसे मेरा बेहतरीन वक्त वो गुजरता है कि जब मेरे पास कोई आदमी आकर बैठ जाते हैं, अगरचे वो बात न करें लेकिन खामोशी के साथ भी बैठ जाएं, बातचीत करें तो बहुत अच्छा. If that person is speaking, then it's even better. But if the person can't even speak, just the presence of another human being is something we crave. क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान किसी होम के अंदर या किसी घर के अंदर या किसी कमरे के अंदर अकेला रेस्ट करते करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता जब गुजर जाता है, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, एक महीना जब गुजर जाता है, तो अब उसके बाद उसको उन्स की ख्वाहिश होती है. दिस पर्सन क्रेव्स कंपेनियनशिप एज अ ह्यूमन बीइंग. दोज आर आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. ये हमारी जरूरत है. और जैसे उस शख्स ने हमें बतलाया कि सबसे बेहतरीन वक्त हमारा वो गुजरता है कि जब हमारे पास कोई आकर बैठ जाए और वक्त गुजारे, हमारी बातें सुने, अपनी बातें सुनाए, अपनी जिंदगी की जो अहम अहम मोड़े थी वो हम उनके साथ डिस्कस करके उससे हमें लुत्फ अंदोज होते हैं. सो वी कैन स्पीक टू somebody and speak about the important milestones of our life, the important events that took place in our life, and that way we can cheer ourselves up once again, enjoy those moments once again, the times of the wedding, the happinesses, the times when we had children and how they were growing up, and the fantastic, fabulous, joyous moments. By speaking to you guys, aap logon ke saath baat karte hue, when we speak about them, then that joy, that happiness, the cheerful mood, we begin to feel it once again. वो खुशी का वक्त जो हमारे ऊपर गुजरा जब हम आपके साथ बातचीत करते हैं उसके बारे में, हमारे बचपना का, अब दो बूढ़े हो गए लेकिन बचपने की बातें, या जिस वक्त अल्लाह ने हमें औलाद दी थी, वो बड़े हो रहे थे, इर्द गिर्द जो काम करते थे, अचानक जो अच्छे मौके मिल जाते, उस वक्त की जो खुशियां और उस वक्त के जो माहौल की खूबसूरती थी और उस वक्त के जो बेहतरीन एहसासात थे, वो अब हमारे ऊपर दोबारा एक किस्म के आ जाते हैं, तो हमारा दिन, हफ्ता खुशी के साथ गुजर जाता है. ऐसे बूढ़ों के पास जाकर और उनकी ये बातें सुन सुन सुनकर जिंदगी ने मुझे बड़ा ही सिखाया है. और अजीब बात यह बतलाई है कि अपनी जिंदगी के अंदर इंसान जितना भी बिजी हो और जितना भी इंसान रेस्ट का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन जब वो बुढ़ापे को वो शख्स पहुंचता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, और उस वक्त वो अकेले होते हैं, तो वो अकेलापन उनके लिए एक मुस्तकिल उनके लिए एक सजा होती है. उनके लिए वो आराम नहीं होता. दैट लोनलीनेस इन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट. इट्स नॉट अ रेस्ट और लग्जरियस टाइम. बिकॉज द एल्डरली दे क्रेव कंपनी. और सोसाइटी के अंदर ये क्यों बड़ी मुसीबत आ गई है, मैंने इसके ऊपर क्यों बातचीत की है, इसलिए कि what I've noticed and a lot of people I've spoken to over the past years, इस कुरान करीम ने और जो अहदीस मुबारका में हमने देखा कि हमें बड़ी तरगीब दी है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, एहसान का मामला करो. वो इसलिए कि इंसान के ऊपर एक वक्त आता है कि अपनी चुस्ती के अंदर और अपनी मस्ती के अंदर होता है, अपने दुनियावी हालात की वजह से, मशगूलियत की वजह से, जो बड़े बूढ़े वालिदैन होते हैं उनकी तरफ खास तवज्जो नहीं होती. एज ए ह्यूमन बीइंग इन आवर एडल्टहुड, इन आवर middle ages, we become so engrossed in the dunya, we become so busy in our commitments. And I say commitments because people are genuinely very, very busy at times. It's not that they are making excuses, it's just that they are genuinely very busy. And that's why Quran has emphasized greatly about the looking after parents, but not just looking after the elderly, but making ihsan, going that 1 mile more than goodness towards them. Busy. And that's why Quran has emphasized greatly about the looking after parents, but not just looking after the elderly, but making ihsan, going that 1 mile more than goodness towards them. And that's why

reach to a certain elderly age when they are totally frustrated, and upon even the good deeds that you are doing, they may find criticism, they may feel they need to respond because they are so frustrated of loneliness, and they are so frustrated of losing authority, because there was a time when they had authority upon the youngsters and now they feel unlistened to. अब उनको ये महसूस होता है कि मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं. So throughout their life, as they were bringing up their family for the 20, 30, 40 years, उनको ये महसूस होता कि जो बात मैं कहता हूँ या कहती हूँ वही चलती है. जिस अंदाज में मैं समझता हूँ ये यंगस्टर नहीं समझते, इसलिए इसी तरीके से करना है. और जब बुढ़ापे के अंदर पहुंचकर उनको ये महसूस होता है कि अब ये अपनी ही मर्जी करते हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं. They are doing whatever they decide and they are not even consulting us. They feel we know better, and at times they do. We know better, but we are not listened to. हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है. And then they feel that because we are the elderly, we should have being consulted about things, whether they are family matters, whether they are individual matters, whether they are matters that concern them or don't concern them. But they have this respect of feeling that we will feel respect if we are involved in your decisions of the family. Aapki family ke andar jo mashware hote hain, uske andar hame bhi shamil karo. बुढ़ापों का, बूढ़ों का और बूढ़ियों का इस किस्म की ज़हनियत होती है कि हमें भी इन मशवरों के अंदर शामिल करो. पूरी जिंदगी 20 साल 30 साल हम आपको जब बड़े करते रहे तो हमें भी तजर्बा है, वी हैव द एक्सपीरियंस, हमें भी इल्म है इन चीजों का, वी हैव द नॉलेज एंड द बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन अचानक आपने हमें पिक्चर से बिल्कुल ही निकाल दिया. बाल की तरह, जैसे बाल आटे से आदमी निकाल कर एक साइड पर रख देता है और आटा बिल्कुल खालिस, तो इसी तरीके से आपने हमें अपने जिंदगियों से बिल्कुल इसी तरह निकाल दिया है. यू हैव प्लक्ड अस आउट ऑफ योर लाइव्स, आउट ऑफ द फैमिली, आउट ऑफ द सोसाइटी, एंड यू हैव पुट अस टू द साइड, एंड दिस एक्चुअली हर्ट्स देम डीप डाउन इनसाइड. अंदर उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है. बट बिकॉज they don't want to upset anybody, they don't normally say this. इसलिए आम तौर पर मैं ये यंगस्टरों कहा करता हूं. So this is the problem that we have in the society. But Quran Kareem and the Ahadith Mubarakah have addressed this head on and told us exactly what to do. Quran Kareem ne aur Ahadith Mubarakah ne बिल्कुल आमने सामने हमें इसका हल बतला दिया है कि उन बुजुर्गों के साथ किस अंदाज में, किस बेहतरीन अंदाज में उनके साथ पेश आना है, उनके साथ वक्त गुजारना है, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनना है, उनके साथ बेहतरीन सलूक करना है, उनकी इज्जत करना है, उनका एहतराम करना है. We are to respect them, honor them, let them know that they are valuable in our society, appreciate their presence amongst us. पहले जमाने में तो हमने अपने बड़ों से ये सुना है कि बाज़ औकात बूढ़े वो इतने बूढ़े हो जाते कि अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते थे. लेकिन जहां भी कोई शादी होता, ब्याह होता, कोई मशवरा होता, कोई इलाके के अंदर अहम काम होता, तो उन बूढ़ों को मंजी के साथ, यानी कट के साथ, ऑन द स्पेशल बेड दैट दे हैव ट्रेडिशनली मेड आउट ऑफ स्ट्रॉ एक्सेट्रा, सो विद दैट दे वुड कैरी दैट एल्डर्स एंड दे वुड गेट देम टू सिट देयर, इवन इफ द एल्डर्स वर नॉट स्पीकिंग एंड इवन इफ द एल्डर्स डिड नॉट हैव एनी मच कंट्रीब्यूशन, बट जस्ट बीइंग देयर एज अ प्रेजेंस, द यंगस्टर्स वुड फील दिस इज आवर बरका, एंड द एल्डर्स वुड फील अप्रिशिएटेड एंड वैल्यूड, एंड दिस वुड एनलाइटन देयर लाइव्स. उनकी जिंदगी इससे बड़ी खुश होती
and they will feel involved.

0: even if they were physically not involved in these occasions. Agarche wo zati taur par kisi khane ki taqseem mein ya kisi cheez ke hissa ke andar wo na lete ya help na karte lekin sirf udhar baithe rehna khaas maqamat ke upar wo apni izzat samajhte, they would feel respected. वो इस समझते कि हम बड़ी कीमती हैं इस सोसाइटी के अंदर and they are और वो कीमती हैं they are most valuable assets that we have with the knowledge and the experience and the understanding of life that they have if they are 80 years old that means they have got 80 years of experience and understanding they may not speak about it बाज़ोकात वो उसके बारे में बातचीत तो नहीं करते तो इसलिए getting back to the mauzu जो मैं बात कर रहा था the topic is we can see a whole depreciation of or unappreciativeness of elders in our society हमारी society के अंदर हम देखें जो कुरान ने हदीस ने और इस्लाम ने जो हमें बड़े बूढ़ों का और elderly का जो लुक आफ्टर करने का अंदाज सिखाया वो एक चीज है और जो आजकल सोसाइटी के अंदर हो रहा है वो एक मुस्तकिल अलग चीज है और कुरान करीम एंड अहदीथ मुबारका एंड द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज टॉट अस एंड इज आस्किंग अस टू डू इज वन फेज And what we see in reality that is happening nowadays is a different phase in the contrast altogether. Many, kai dekhe hain, hospitalon ke andar main to jaakar visit karte rehta hoon, jab bhi farigh waqt mile. Aur maine dekha ke ek भूले के पास जब मैं गया वो गिर गए थे गिरने की वजह से अस्पताल के अंदर उनकी हड्डी वगैरह टांग की जो हड्डियां हैं वो टूट गई थी तो उन्होंने बांध कर टांग वहां लंबी उन्होंने रख दी एन एल्डरली आई न्यू एंड आई ट्राई टू गो टू हॉस्पिटल व्हेन एवर आई गेट अ फ्री चांस टू विजिट पीपल डिफरेंट हॉस्पिटल्स बिकॉज इट ब्रिंग्स द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड सेकेंडली देयर दुआज एंड बिकॉज द हदीस हैज रियली रिकमेंडेड इट So this person, elderly, had fallen, broken some bone in his leg. He had a plaster and had his leg hung up. तो उनके पास हम गए और वहाँ करीब ही एक दूसरे भी थे वो मुसलमान नहीं थे लेकिन हर आदमी एक इंसान है. As a human being, we treat everybody the same. So I spent a few minutes with this elderly person that I had gone to visit, just ke paas mein gaya tha, and then I said, I want to go and spend some time, a few minutes with this other person, a patient. It might lighten the person's day. And he said, oh, of course, Maulana, go over there. That's perfectly fine. Unke paas aap ja sakte hain, Maulana, aap jao. Uske paas mein jab gaya to, one of the things is, ke you show them positiveness of life. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ne hame badi hi ajeeb andaaz ke andar jo adab sikhaye hain kisi bimar ke paas jaane ke the etiquettes of when you visit an ill person and a patient and how you to respond and show positiveness and show them life and show that they will get better etc the prophet sallallahu alaihi wasallam said tahur inshallah he said you will be fine inshallah a little while and you will get better inshallah you watch out so the prophet sallallahu alaihi wasallam used to pump in positivity into people as soon as I went to him and I sat and spoke and after 5 minutes और जस्ट ओवर 5 minutes आई वॉन्टेड टू लीव मैं 5 मिनट के बाद मेरा दिल था कि अब इससे उठकर एक दूसरा आदमी है वहां चलो उसके पास भी चले जाते हैं बिकॉज इट वॉज अ वार्ड एंड देयर वाज अबाउट 6 people 6 आदमी थे उसमें मेरे दिल था 5 मिनट इन सब के पास चले जाऊं आई ओनली नो दिस वन पर्सनली बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स एंड इट्स नाइस टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम उसने जो बातें शुरू की कि When I was young, I was doing such and such, and I did this, and I did this, and I was in the army, and then I did this, and तो मैंने देखा जब टाइम हो गया तो मैंने कहा कि I need to go and I said his name Robert. I said Robert, I need to go and I want to visit another person. तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. He had tears, his eyes filled with tears, and I noticed, and I could see there was a lump in his throat. He wanted to speak, but he was feeling upset. तो as a mark of respect, I grabbed hold of his hand and I gave it a little squeeze. उसका हाथ पकड़कर मैंने आहिस्ते से उसको थोड़ा सा जोर दिया और मैंने कहा, you'll be okay, don't worry. I hope you're not upset with me going. तो he said, no, I'm so happy that you came that I don't know how to thank you. मैं इतना खुश हूँ आपके आने से कि मुझे पता नहीं कि आपका शुक्रिया किस तरह करूं. How to thank you. तो मैंने उसको I shook his hand again and his arm was shaking and I said, oh, you don't need to thank me, I'm just doing a duty that my faith instructs me to do. मैंने कहा कि मेरे इस्लाम ने, मैंने सोचा कि साथ में उसको दावत भी दे दूं, मेरे दीन ने मेरे ऊपर एक फरीजा रखा है, मैं अपना फरीजा पूरा कर रहा हूं, ये आपके ऊपर एहसान नहीं है. I'm not doing a favor for you. This is a duty my religion has placed upon me, my faith has given me. I thought, आदमी किसी पर एहसान तो नहीं करना चाहिए, ये तो मैं अपने दीन का एक फरीजा अदा कर रहा हूं, मेरे नबी ने इसकी तरगीब दी है, इस्लाम ने हमें हुक्म दिया. वो बहुत खुश हुआ. तो मैंने कहा कि I'm sure you'll get other visitors. And this is the point I wanted to make. मैंने कहा कि फिक्र ना करो, आपके कोई ना कोई विजिटर जरूर आते रहेंगे. और ये पॉइंट मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं. उसने, वो बेड पर लेटा हुआ था, he slowly shook his head from right to left and left to right and right to left. उसने कहा, I've been here for many, many months. And you are the first person, other than the medical staff, doctors, nurses, the people who work there, you're the first person who's come and given me some time. You're the first person who's come and given me time. You're the first person. He's repeated it a couple of times. Do teen martaba usne ye kaha ki tu sabse pehla aadmi hai. ये मेडिकल स्टाफ के अलावा, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, जो उनके कंसल्टेंट्स जो उनके होते हैं अस्पताल के, मतलब उनके अलावा मेरे कई कई महीने हो गए हैं, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे पास बैठकर इस तरह बातचीत की. खैर, आई sat there a few more minutes. I couldn't just get up and just walk away. मैं वहां से उठकर जा नहीं सकता, दो तीन मिनट और बैठा. वो खामोश रहा उसके बाद. उसके बाद उसने कुछ और बातें नहीं की. He didn't speak about his past or anything. लेकिन मैंने जैसे हाथ उसका पकड़ रखा, उसने मेरे हाथ को भी जोर दिया. I had my hand in his hand. He was elderly, past his 80s, close to his 90s. 80 से गुजर गया था, 90 साल के करीब था बूढ़ा. मैंने अपना हाथ उसके हाथ के अंदर रखा हुआ था और उस वो भी नहीं छोड़ रहा था. मेरे दिल के अंदर अजीब बात हुई कि आज ये शख्स इस तरह है, इतना दुखिया है, अपने दिल की बात किसी को कह नहीं सकता. और जो मेडिकल स्टाफ होते हैं बेचारे, दे आर डूइंग सच अ लवली जॉब, लेकिन दे हैवंट गॉट टाइम टू सिट डाउन एंड टॉक टू एनीबॉडी लाइक दिस. उनका तो काम ही होता है, किसी को इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देकर वहां से चले गए, किसी का हार्ट रेट चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया. Consultants, if they come along, they'll ask you your symptoms. In 2 minutes, they are gone. They can't talk about anything else because they've got so many patients to cover. उनके पास इतना वक्त नहीं होता. जो cleaning staff होते हैं बेचारे, वो आकर जल्दी जल्दी आपको एक साइड में करके, आपकी बेड ठीक ठाक करके, बेड की जो शीट्स हैं वो तब्दील करके, पिलो तब्दील करके वहां से चले गए दूसरे के पास. They've got a certain amount of time. And so much jobs to do. तो ये बातें उनके पास, बेचारों के पास टाइम नहीं होता. They are themselves wonderful people. The staff, whether they are the nurses, whether they are cleaners, whether they are the doctors, the senior doctors, the consultants, the ancillary staff, जितने भी हैं, all those in the healthcare are fantastic, lovely people, very, very patient. But they haven't got the time to sit down with a patient because there's so many patients, hundreds of patients. And how are they going to sit with each one? This is the responsibility of the society. Ye zimmedari hai. Society ki, first of all, the immediate family, then the extended family, and then the wider society. Kitne aise hai ki unke upar kai kai kai mahine balki saal guzar jate hain. Wo homes ke andar akele pade hue hain. They are laying down all by themselves in the homes, and it's just like those traffic lights. The traffic light will go red. A time will come when it will become amber, then green, then amber, then red. The whole cycle just goes round and round and round. Pura cycle is tarah. To un bicharon ke liye bhi wahan bistre ke andar hote hain. Subah hoti hai, unko kuch nashta diya jata hai, bas lete rehte hain. Sham hoti hai, khana diya jata hai, darmiyan mein koi snack, chai wagera. वक्त आता है, लाइट बंद हो गई, गो टू स्लीप, सुबह उठते हैं, फिर इस तरह दिन गुजर जाता है, फिर इस तरह रात. आखिर वो भी ह्यूमन बीइंग्स, वो भी इंसान है. दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे हैव देयर नीड्स, दे हैव देयर वांट्स, दे आर पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू आवर सोसाइटी फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ईयर्स. कितने साल उन्होंने हमारी इस सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया. तो आया ऐसे बूढ़ों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? आर वी गोइंग टू रियली बी दैट हार्ड हार्टेड दैट वी आर गोइंग टू लीव द एल्डरली जस्ट बाय देमसेल्व्स लाइक दैट? हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुतहरा की तरफ देखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वहां एक बूढ़ी हुआ करती थी. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के बाद उनके पास फौरन जाते, और वो भी इंतजार करती. बहुत बड़ी बूढ़ी थी, एन एल्डरली, वेरी एल्डरली पर्सन. एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड परफॉर्म जुमा. रिमेंबर, इन जुमा ही इज गुड ऑल द सहाबा इकराम, ऑल हिज कंपेनियंस रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ऑल ऑफ देम आर द पीपल ऑफ जन्ना, ऑल ऑफ द सहाबा. And he would give them the sermon, the Jumah khutbah. And Jumah khutbah ke andar bayan farmate, Jumah ki namaz fir padte. And then he would come out. Think how busy he was. Think how much he had on his mind. And he's got all the hundreds of sahaba, all his companions around him. And of course there will be many people who will have their personal needs, personal mashwara. Want to speak to the Prophet. Like, and he would go to this elderly. And he would spend his time with them for a bit. And then go home. And Anas radiallahu ta'ala says, when we grew up to follow upon the sunnah, we would go and she would make us some food. A special food is mentioned in the hadith. And we would sit down and eat with her, and then we would run off home. What a beautiful society the Prophet was creating. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam ek behtareen muashara bana rahe the, ki jisme khud bhi jaate budon ke paas, thoda waqt guzarte. कि अगर एक शख्स एक दिन के अंदर जाए जुमा के दिन, दूसरे लोग जो हैं वो थर्सडे के अंदर जाएं, दूसरे लोग सैटरडे के अंदर जाएं, तो इस तरीके से बूढ़ों की जो जिंदगी है वो बेहतरीन गुजर सकती है. हाउ मेनी टाइम्स, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन दिस लास्ट मंथ और टू मंथ्स हैव यू विजिटेड एन एल्डरली पर्सन इन योर सोसाइटी? आपके इलाके के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर जो बड़े बूढ़े हैं, कितनी मरतबा पिछले इस महीने में या दो महीने में या छह महीने में आप उनके पास गए और थोड़ा सा वक्त उनके पास गुजारा है? अपने यहां स्कूल के अंदर हमने तो एक सिस्टम कई सालों से हमने शुरू किया था कि हर हफ्ते हम यंगस्टरों को ले जाते हैं, छह सात को एक ग्रुप बनाकर, और स्कूल के करीब जो बूढ़ों का होम है उनके पास चले जाते हैं तो दो इनके पास चले गए इस बूढ़ी के पास दो उसके पास चले गए तीन चार उसके पास चले गए उनके पास बैठते हैं उनको पूछते हैं वो बड़ी बूढ़ी जो है या बूढ़ा जो है 80-90 years old वो जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे 11 साल के 10 साल के उनके पास आते हैं 12 साल के 12 years old 11 years old of course under the supervision हम टीचर्स उनके पास जाते हैं मैं अपने जो स्टाफ है उनके पास भेज देता हूं उनके पास बैठते हैं उनको पूछते हैं उनसे बातें करते हैं they take some crayons take some pencils और उनके सामने बैठकर उनके साथ खेलते हैं गेम खेलते हैं वगैरह spend about an hour तो उससे एक सोसाइटी के अंदर हम सोसाइटी बना रहे हैं कि जिसके अंदर the elderly they feel valued ठीक है हम हर एक का तो cater नहीं कर सकते लेकिन कम से कम the two homes of the elderly जहां हम जाते हैं of course जो procedures होते हैं वहां home की visiting के उन वहां जो matron है we keep in contact with them and they feel so happy that youngsters are coming in तो उससे क्या होता है कि जो elderly है जो बड़े बूढ़े हैं they feel happy about it and they are looking forward to that Tuesday afternoon or sometimes the Thursday afternoon वो मंगल के जो afternoon है या जो Thursday का afternoon है उसके लिए वो आगे इंतजार करते हैं कि अभी कौन सा दिन है वो matron हमें कह रहे थे the person the sister in charge she said there's so many times these elderly people they say what day is it today And when we tell them, we said, why? They said, we're waiting for the Tuesday afternoon because those youngsters are going to be coming to visit us. Hum mangal afternoon ke intezaar kar rahe hain ki wo youngster aayenge hamare saath kuch waqt guzarenge. To isme boodhon ka bhi fayda aur youngsters ka fayda kya? Ki inke zehen ke andar ye aata hai ki hame ek waqt aayega hum bhi is umar ke honge. और दूसरी बात बड़ों की कदर तीसरी बात थर्ड थिंग इज वी आर ट्रेनिंग देम ऑफ हाउ टू हैव दिस कनेक्शन विद द एल्डर्स सो व्हेन दे वांट टू सिट विद द एल्डर्स दे नो व्हाट टू डू दे नो हाउ टू रिएक्ट दे नो व्हाट प्लीजेस द एल्डर्स हाउ टू कीप देम एंटरटेन्ड ये ना हो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से देयर इज सच अ बिग डिस्कनेक्ट अमंगस्ट द सोसाइटी ऑफ पीपल दैट यू विल हैव यंगस्टर्स सिटिंग डाउन द एल्डर्स सिटिंग डाउन एंड दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑन अ नंबर ऑफ वेडिंग्स पीपल आर सिटिंग ऑन द टेबल And they've got their smartphones out, that person's got their smartphones out, and that one, and they are actually too busy talking to the people who are not there. And the people that are there, they're not talking to them. Jo udhar log hain, aapke saath table mein, unse baat nahi karte, aur jo udhar maujood nahi hai, unke saath baat kar rahe hain, through the media, social media. We've flipped the roles. तो इसलिए मकसद ये होता है कि इन यंगस्टर्स की यहां एजुकेशनल और एकेडमिक स्कूलिंग हो इनकी मॉरल ट्रेनिंग भी जरूरी है इनकी अखलाकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है देयर मॉरल ट्रेनिंग देयर कैरेक्टर बिल्डिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स विद द एल्डरली और दोज हु आर ओल्डर देन देम अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स वैल्यूइंग द एल्डरली इन द सोसाइटी दैट्स और वैल्यूइंग द एल्डरली सिटीजंस ऑफ आवर एरिया That is a huge skill that we need to instill inside our youngsters. Amare youngstron ke andar ye skill and the empathy and the sympathy for these elderly, that is important. That's not just Islam, that's our humanity as a human being. Ek insan hone ke nate se. Now, I know I've been going on very long and we've not even had the breaks in the middle. Darmiyan mein do breaks reh gayi hain, but it was a message I really wanted to pass on and speak about today because I know we have a huge amount of listeners. Mujhe pata hai ki bahut log sunte hain hamare is session ko. Aur darmiyan mein do breaks bhi zara delay ho gayi hain. Lekin this is a very important topic. Aaj agar humne... हमारे यंगस्टरों की इस तरीके से तरबियत नहीं की कि बड़े बूढ़ों का लुक आफ्टर करें, तो फ्यूचर में जब आपकी बारी आएगी और आप उधर घर के अंदर होंगे, वो आपका लुक आफ्टर नहीं करेंगे, वो अपने जरूरियात जिंदगी के अंदर बिजी होकर आपको छोड़ देंगे। आप होम के अंदर चले गए, तब तो आप उनकी नजर से भी ओझल हो गए। अब तो उस वाली बात है, बूढ़े वाली के कई कई महीने गुजर गए और अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। Like the elderly said to me that I've been here for many, many months and nobody other than the medical staff have visited me. You're the first person. We don't want that to happen to our next elderly generation. We need to speak to our youngsters, talk to them, explain to them, take them to the elderly, instill the values of respect, love and connection with the elderly right from now. Otherwise, it could be that in some years' time, when you are frail and when you are weak and when you are vulnerable and you are at home by yourself as an elderly or as a weak or as an ill person, the family are too busy in their worldly commitments, cannot give you time, and you are lonely and you are frustrated, and then you are transferred to a home where the little chance of anybody coming to you has decimated. And in the words of that old elderly person, it's been months and months and nobody has seen me. And you have the same feeling as that our friend of ours who said, the best time of my week is when somebody can come and give me company. सबसे बेहतरीन मेरा वक्त वो वक्त होता है जब मेरे पास कोई आदमी आकर बैठ जाए, अगर जी वो बात करे या ना करे, लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारना। How many have you got elderly parents, elderly relatives, or elderly people in your society that you have spent time with? कितने आपके साथ, चाहे आपके बूढ़े वालिदैन हैं या रिश्तेदार हो या आपके इलाके के अंदर या जान पहचान हो या वैसे ही आपके इलाके वाले हो, कमजोरी की वजह से वो उस हालत के अंदर पहुंच गए कि अब बाहर निकल नहीं सकते, और आपने उनके साथ वक्त गुजारा है या नहीं, आपने उनको विजिट किया है या नहीं। ये आया अपनी रोजमर्रा की बिजी जिंदगी के अंदर आपने अपनी तवज्जो ही उनसे हटा दी, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमावे और हमारे जो इलाके के फैमिली के रिश्तेदारों के जान पहचान हो या ना हो, उन लोगों के जो बड़े बूढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनकी कदर नसीब फरमावे और हमारे दिल के अंदर उनके लिए रहम फरमाए। मे अल्लाह ग्रांट अस मर्सी इन आवर हार्ट्स फॉर दोस पीपल, ग्रांट अस लव एंड एम्पैथी एंड सिंपैथी फॉर दोस पीपल, सो दैट वी कैन वैल्यू देम, रिस्पेक्ट देम, गिव देम टाइम, हेल्प देम फील हैप्पी, ब्रिंग जॉय एंड चीयरफुलनेस वंस अगेन इन देयर लाइफ जस्ट बाय लिसनिंग टू देम, टॉकिंग टू देम, स्पेंडिंग टाइम विद देम। इसी के साथ आज के इस सेशन को, इस मैसेज के साथ खत्म करता हूं कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स किसी बीमार के पास सुबह जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक मगफरत की दुआ फरमाते हैं, और जो शख्स शाम के वक्त जाता है तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह तक, पूरी शाम, पूरी रात, सुबह तक उसके लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। That person who goes and visits the ill, because if you're elderly, you are ill, you are weak, you are vulnerable. Those people who visit the sick, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Allah's 70,000 angels will ask for forgiveness for you If you go in the morning, all day they will ask for forgiveness. And if you go in the evening, all night they will ask for forgiveness. Let's finish off with a dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursaleen, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بدنامی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں حسد ہو بغض ہو کینہ ہو تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے جو مظلومین ہیں یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما ظلم سے ان کو سب کو نجات نصیب فرما اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ نصیب فرما اور جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے ہمارے ہر ہفتے کا پروگرام ایوری فرائیڈے ایوننگ ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM دا ہول آف ویسٹ یارکشائر اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یو کین لسن ٹو اس آن دا انٹرنیٹ ہر جمعہ کو ایوری فرائیڈے وی آر آن ہیئر I'm your host, Maulana Fazal Dad, and this is Sunrise Radio. And you're most welcome to take part in this, like we always say, at the beginning of every of our sessions. Isi ke saath, ijazat lete hain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Abhi aap sun rahe the Alim On Air, Hazrat Maulana Fazal Dad ke saath. Alim On Air is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964. 0431-919-964. And I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Feroz Khan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Panah mangta hu Allah ki shaitan mar

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। मैं जतीश पुरन आपका साथ हूं। दोस्तों बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एक घंटा का प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है दोस्तों। फिर इसके बाद आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे और इस तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। रोय सिंह रहेंगे और फिर बाद में सुशीला है, और तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मुझे मालूम नहीं है कि शशि जोकन प्रोग्राम करेगी आज कि नहीं, पर चलो देखते हैं। ठीक है, रेडियो मिजबानी आप सुन रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा वेदर ब्रिस्बेन के लिए क्या है। आज कहा गया है कि कुछ बादल छाए रहेंगे, 12 और 22 रहेगा दोस्तों। और कल के लिए कहा गया है पॉसिबल शावर्स, 13 और 20 रहेगा। ट्यूसडे के लिए पार्टली क्लाउडी और 12 और 21 कहा गया है। वेंसडे को पार्टली क्लाउडी, 12 और 21 नो रेन, और ट्यूसडे को भी नो रेन। थर्सडे को पॉसिबल शावर्स, 11 और 21 रहेगा। फ्राइडे को भी शावर और 2, 11 और 21। सैटरडे को मोस्टली सनी, 10 और 21 रहेगा। तो ये रहा हमारा ब्रिस्बेन का वेदर। नंबर है 04-3003-1701। ये अगर आप चाहे तो हमारा यहाँ का लैंडलाइन है 3279-1701। आज का जो चॉइस मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, ये कुछ पुराने गीत हैं जो अपने समय पर और अभी भी जो लोग गुनगुनाते रहते हैं। और आज का पहला गीत है पल पल दिल के पास। आपको याद होगा 1973 मूवी ब्लैकमेल का गाना है, और खूबसूरत गीत किशोर जी ने गाए, इसको बहुत प्यार से गाया था इस गीत को उन्होंने दोस्तों। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और राजेंद्र किशन ने इसको लिखा था। और चलिए, रोमांटिक गीत है दोस्तों और आपको अच्छा लगेगा। पल पल दिल के पास।

जी हाँ दोस्तों, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और सचमुच में किशोर कुमार, क्या बताऊँ मैं, पूरा अपने दिल को छू लेने वाली आवाज में इस गीत को गाया था दोस्तों। ऐसे फील होता आपको, होता कि नहीं? जी हाँ, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान, और जैसे मैंने कहा कुछ इसी तरह के गीत आज मैं लेकर आया हूँ। और अगला जो गीत है ये 1972 मूवी मेरे जीवन साथी का गाना है, और इस गीत को भी किशोर जी ने गाए हैं इस गीत को, और चलो शायद आपको भी अच्छा लग जाए दोस्तों। किशोर कुमार और आर डी बर्मन के संगीत पर लीजिए, सुनिए। जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना और तनु

और इस बार दोस्तों आप रफी साहब से सुनेंगे, बहुत ही प्यारा गीत है चांदवी का चांद। तो कभी आप, हम बस जानते हैं, गा देते हैं, सुन लेते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि इस गाना का नाम चौदवी का चांद ही क्यों है, कभी सोचा आपने? बात ऐसे दोस्तों, पुराने ज़माने में शायरी में चौदवी का जो चौदवी रात का चांद सबसे खूबसूरत माना जाता था। जी हाँ, और इसीलिए इसका नाम इसे दिया गया है, बहुत खूबसूरत चांद होता है। और ये क्या बोलते हैं, इस समय ये एक डिस्क्रिप्शन है कि खूबसूरत चांद हो या चमकता हुआ सूरज, जो भी हो, खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। क्या कंपैरिजन किया है इन्होंने चांद के साथ, जो सबसे सुंदर चांद होता है उस समय। तो चलिए, यही इसका मतलब होता है। 14th डे, जब लूना मून जो 14th डे होता है, वो बहुत सुंदर होता है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत प्यारा सा।

और मैं ये पढ़ रहा था दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूं। कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी मुश्किलें देखकर रुकना मत। याद रखिए, पतंग हवा के साथ नहीं, जी हाँ, हवा के खिलाफ उड़ती है। शायद एरोप्लेन भी इसीलिए तो ऊपर रहते हैं ना। इसी तरह इंसान भी मुश्किलों का सामना करके ही, जी हाँ, बुलंदियां तक पहुंचता है। हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है दोस्तों, इसीलिए हमेशा मुस्कुराए, हौसला रखिए और अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो इंसान खुद पर यकीन करता है, उसी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता है। सही बात है दोस्तों, 100%। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं, और जितने भी लोग हमारे इंटरनेट से सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत से लोग अभी सफ़र कर रहे होंगे, रास्ते पर होंगे, रेडियो से सुन रहे होंगे। तो चलो आप सभी के लिए अगला जो गीत है, एक बार फिर रफ़ी साहब शैलेंद्र का लिखा हुआ बहुत ही बढ़िया मूवी यानी गाइड का गीत है दोस्तों। चलो सुनते हैं, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: The Total Focus Group Australian International Masters 2026 hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
2: और देखिए दोस्तों, अभी तो WhatsApp और Messenger का जमाना है, लेकिन पहले प्यार जताने के लिए, प्यार बतलाने के लिए पहले लोग खतों में खत में लिखा जाता था ना, पेन लेकर पेपर में। आजकल तो शायद पेन पकड़ना और पेपर में लिखना तो मुश्किल होगा, जो हमेशा नहीं लिखते लिखते हैं जिसे मैं। और मुझे इस बात का बहुत मालूम तो नहीं है, शायद आपको इसे कुछ लेटा मिला होगा अपने ज़माने में, लेकिन हाँ आजकल ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन चलिए, बहुत प्यारा सा गीत है, रफ़ी साहब ने गाए हैं इस गीत को और म्यूज़िक को दिया है शंकर जय किशन ने। ठीक है, कौन सा गाना आपको शायद पता चल गया होगा। लिखा जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे फिल्म कन्यादान का गाना है और मूवी 1968।

चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय भाग रहा है, जैसे मैंने कहा आधा घंटा और बचा है, फिर इसके बाद में आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे, कार्यक्रम सुनेंगे उनके साथ और प्यारे प्यारे गीत लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में रोय सिंह है और फिर सुशीला है, और मुझे लग रहा है 5 बजे से आप शशि झोकर के साथ होंगे। और अगला जो गीत है दोस्तों, फिल्म अजनबी का है, 1974, और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था दोस्तों इस गीत को। और ये पहली नज़र के जो प्यार की बातें हैं ना, उसी पर ये कुछ शायद कह रहे होंगे। आर डी बर्मन के संगीत है और ये गाना भी एक एवरग्रीन सॉन्ग है दोस्तों। चलो सुनते हैं।

0: दादी? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: और दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो सफ़र चल रहा है, जो गीत है, आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, कुछ चुना हूँ, आज थोड़ा सा होमवर्क किया था, मैंने सोचा कि चलो आपको अच्छा सा थोड़ा गीत आपके लिए लेकर आऊँ, और आज ऐसा किया हूँ मैं आपके लिए, तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगला जो गीत है मुकेश जी की आवाज़ में, ये एक नज़म, पहले एक कविता के रूप में इसको लिखी गई थी दोस्तों, इट वॉज लाइक अ कविता, लेकिन शाहिद लुधियानवी के अल्फाज और खयाम साहब का जो संगीत ने इसे बॉलीवुड के सबसे यादगार रोमांटिक गीतों में से शामिल कर दिया गया। जी हाँ, तो इन्होंने कर दिया इसमें, और अगर मैं बताऊँ किसके लिए तो शायद आपको पता चल जाएगा, लेकिन नहीं बताऊँगा, नहीं मैं, आप सुनिए, आपको तो पता चल जाएगा, इट्स वेरी आइकॉनिक सॉन्ग।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं और चलो कुछ लोग टेक्स्ट भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लोग पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, आज का रूप थोड़ा ऐसा ही बन गया है। खैर चलो, और क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्यार हमेशा क्या बोलते हैं, शब्दों और लफ्ज़ों से नहीं होता है, कभी कभी हम इशारों से काम बना लेते हैं ना, हम नहीं, आई मीन जनरली ऐसे लोग करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इंटरनेट से। और अगर आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो ट्यून इन आप जाकर डाउनलोड कर ले, और उसमें आप सर्च करें रेडियो बिजवानी, आपको मिल जाएगा। अभी भी हमारा जो ऐप से बहुत समय लग रहा है दोस्तों। चलिए अगला जो गीत, हाँ इस गीत में शायर कहता है, मैं सिर्फ दो पल का शायर हूँ, आज हूँ कल शायद ना रहूँ, लेकिन मेरे अल्फाज और मेरी सोच हमेशा जिंदा रहेंगे। ये गीत हमें सिखाता है कि इंसान की जो जिंदगी है छोटी हो सकती है, लेकिन उसके जो अच्छे कर्म हैं, उसकी मोहब्बत और उसकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में, जी हाँ, जिंदा रहती है। पता चल गया कौन सा गीत? मुकेश की आवाज में एक बार फिर।

जी हाँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ दोस्तों, शायर तो नहीं हूँ लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। और अब थोड़ा सा ही समय बचा है दोस्तों, इसके बाद में आप फिरोज भाई के साथ हो जाएंगे, ठीक है। और अगला जो गीत है इसे, जी हाँ, बहुत ही क्या बताऊँ, कुछ ऐसा मूड बन गया है, खैर चलो, किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है दोस्तों, और सुनते हैं। फिल्म आपकी कसम का गीत है, आर डी बर्मन के संगीत पर।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत का जो पैगाम बहुत गहरा है दोस्तों। जिंदगी के सफर में कुछ पल, कुछ लोग और कुछ रिश्ते एक बार चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते दोस्तों। इसीलिए हमें अपने रिश्तों की कदर वक्त रहते करने चाहिए, जब तक है साथ में आप करें, ठीक है। जो गुस्सा है और जो गलत फहमियाँ को ज़्यादा देर तक दिल में नहीं रखना चाहिए। वक्त निकल जाए तो सिर्फ, जी हाँ, वक्त निकल जाए तो सिर्फ याद रह जाते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों को याद दें दोस्तों। जिंदगी में हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे दोस्तों। डोंट टेक इट सो सीरियसली। मैं तो जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ दोस्तों, ऑनेस्टली। चलो नहीं लेकिन जाना है, कल सुबह मिलेंगे दोस्तों अमिता जी के साथ में। अपना ख्याल रखेगा और इसके बाद आपको याद रहे, जी हाँ, फिरोज भाई आ जाएंगे, ठीक है। लाइनअप बहुत सुंदर है आज, तो आप रेडियो सुनते रहिए। और उसके बाद में रॉय सिंह, फिर सुशीला है, फिर रात को मुझे लग रहा है शशि जोकन रहेंगी, ठीक है, 5 बजे से। अपना ख्याल रखेगा दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध, बल्कि समाज सेवा। इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।
1: जी हाँ, संगीत की झनकार में आप सबका स्वागत करते हुए आशा करते हैं कि आज का दिन, रविवार का दिन, 5th of July 2026 शुभ हो। बाहर मुड़कर देखिए, ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। साथ दीजिए अभी से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए बहुत खूब संगीत की झनकार पर। और याद रहे, संगीत की झनकार में अक्सर हम आपके लिए पेश करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत, पुराने फिल्मों से निकाली हुई हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, और फिर अंत में आपके लिए द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 90s। फिलहाल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड वेलकम वंस अगेन टू संगीत की झनकार ऑन द स्टेशन 79 ऑन ब्रिस्बन। योर होस्ट फिरोज खान, लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लेजर ऑफ योर कंपनी टिल 12:30 PM. Beautiful Sunday, 5th of July, 1926. No, I'm one century behind. Actually, it's 2026. तो चलो शुरुआत करते हैं संगीत की झनकार में आपके लिए विशेष प्रोग्राम साज और आवाज, जिसमें चुने हुए लोकप्रिय संगीत के साथ साथ फिल्मी डायलॉग। और आज फिल्म है हमराज। अभी से लेकर 11:30 बजे तक आपके साथ फिरोज खान, यादों के सफर के साथ।
2: अब प्रस्तुत है साज और आवाज, और साज और आवाज में मुमताज, सुनील दत्त, राजकुमार की फिल्म हमराज से निकाली हुई कुछ चुने हुए संगीत और साथ ही साथ डायलॉग्स।
3: बाप रे बाप, ये सब क्या है?
4: आपको नहीं मालूम?
3: बिल्कुल नहीं मालूम।
4: वाह वाह, अपनी मोहब्बत के बारे में तो बहुत शेख ही मारते हो। और ये भी नहीं मालूम कि आज हमारी शादी की चौथी सालगिरह है।
3: 4 साल हो गए हमारी शादी को। यकीन नहीं आता। मेरी थी
4: जी, जान से चाहने वाली एक दीदी की तरफ से प्यार का तोहफा।
3: ओ, सोने का, बहुत खूबसूरत, लवली, थैंक यू।
4: अच्छा, बातें कम कीजिए, आइए केक काटें।
3: एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले पति की ओर से अपनी पत्नी के लिए प्यार के साथ।
4: मैं समझी थी आप भूल गए।
3: जान, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरी जिंदगी में बहार आई थी।